ए रशुगे एम्मे दुरुफरातु मीहकु दुवमुं आइस बुन्ये ए अहुरेंगे कौमुगे मीहुन्नेव तियबै मीहुं ए रसूलुन्न तबाअवाशे